0: नपा मेक उगलाक
1: असैया तेरा ट्रिपिट
2: सिया था हॉट एंड स्पाइसी विद सुदु कोची
0: हाउ इज सुपर वेलकम सुदु कोची ओया तक